सम्माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय को अनुमति ले राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति भएको राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र संचालन विधेयक 2083 पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।

गजुरी में आवाज चीजें अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहा तो पहले जूनसुके ब्रांड को पुराने साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीवीएस चौड़ा पावर हुने था 10 लाख सम्मो को कैश डिस्काउंट टीवीएस को सुन को चाबी अथवा 100% सम्मो कैश बैक यदि मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरा इवैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु बैंक सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराज मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।